0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sound check. Studio time. The studio time.
4: It's 7 a.m. Behind the sad budget.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: না আস্তে বারখানে কি মনে লাগো ফের বিজুলি কা বাল্ব জ্বলে সা এই কাঞ্চি দাদা পতল গাইরে বিজুলি কা বাল্ব মেরা আইজা আ দিদি চিনকো আছেন কি মেরা কসরি স্বপ্ন রামরো অরিজিনাল বিজুলি কা সামান আর কিন্নু পারিনি তা যাহা পায় তেই বাটা ল্যাউডা এসে ডুবলি তা হুনছ তা অরিজিনাল বিজুলি কা সামান কিন্ন তা ও সল্লির কো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জান পর্ছ के तपाई घर तथा अफिस को लागी बिजुली को राम्रो क्वालिटी को सामान खोज्दै हुनुहुन्छ यदि क्वालिटी को इलेक्ट्रोनिक सामान लिन चाहनुहुन्छ भने सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पार्क सल्लिनीमा रहेको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस् यहाँ विभिन्न ब्रान्ड का गुणस्तरीय बिजुली का सम्पूर्ण सामान सर्भिस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिङ को तार अर्थिङ रड अर्थिङ केमिकल उपलब्ध छ साथै एलसीडी एलईडी टीभी साउन्ड सिस्टम कम्प्युटर ल्यापटप हाउस वायरिङ का सामानहरू चार्ज वाला टर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ चट्याङमा परेर जलेका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि मरम्मत गरिन्छ साथै डिप फ्रिज स्विच एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर अजय पञ्चियार सम्पर्क नम्बर 9809904 र 9833668 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पाँच सल्लेरी सोलुकुम्बु
1: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र

आईपीटीवी से मतदान कर ले जीशाउंड इंटरनेट नेपाल को एकमात्र नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 प्रगति भएको वाईफाई 6 बन्दहरूसँग उत्कृष्ट जवान प्रदान कर ले जीशाउंड इंटरनेट साथै इंटरनेट टीवी र अन्य सेवाहरू सजिलै व्यवस्थित गर्ने एउटा उपयोगी सेल्फ केयर एप माई जीशाउंड एप।

0: করবেন কখন?
1: सार्वजनिक हित का लागी उज्यालो को अनुरोध
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भए में कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sun FM. It's studio time.
2: AM.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंदू

0: programa Vipo Pandora, no Jornal de Moçambique.
1: तपाईं के चिंजान को बेटी या उनको फैमिली रोजगारी दिने नाम में तालोबन न पारी लड़ाई पकाई अवैधानिक रूप में विदेश में पुर्यावलन उस गरम कसे ने इसको लोग दिखाए घर परिवार आफंतर और ओड़ा कार्यालय में जानकारी दिया
2: देश बिखरा और सर पसर बात बचाऊं सिर्फ सिकाऊं रसूदेश में आत्मनिर्भर बनाऊं मानव देश बिखरा तथा और सर पसर को रोकथाम करी नागरिक दायित्व पूरा करूं
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड हार्दिक निमन्त्रणा कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 83 गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशालामा माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुङको प्रमुख आतिथ्यता र माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
4: कार्यक्रम हुने 83 गते शनिबार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाडि भेला भएर विनोद प्रभात फेरि शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
3: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति

0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरौं, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना।
0: गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जंगल को स्थिति प्रति हमी गहरो सकारात्मक छो सही राष्ट्रीय विपत्ति को बुझीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुख्भ अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दी नया नीति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमीर सब सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेटा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय बिहरा संबंधी सभी में जानकारी कराई।
3: वातावरण सुधार
2: रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना।
0: गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जंगल को स्थिति प्रति हमी गहरो सकारात्मक छो सही राष्ट्रीय विपत्ति को बुझीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुख्भ अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दी नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमीर सब सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेट पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने रेट पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय बिहरा संबंधी सभी में जानकारी कराई।
3: वातावरण सुधार
4: हत्या दीदी यह नया घर बनाने कस्तो तनाव को काम रहे बिजुली को सामान कि बजार का चार चार वा पसल चारे पत्ते पाए ओह अब सामान लिना काठमाडौँ नै जानु पर्ने हो कि क्या धक बहन तिमी पनि कस्तो सम्झनामा छौ बिजुलीको सामान लिन काठमाडौँ किन जानु हाम्रै सुलुखुमा सबै थोक पाइन्छ त ए हो र दिदी कहाँ पाइन्छ म त खोज्दा खोज्दा थाकिसके हौ नसुनु बहिनी सुरु दुखुमा नगरपालिका ओडा नम्बर 5 भएको शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाई छ नि त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन् बोर्ड आधुनिक वाइरिंग का सामान जे खुशी तही तैयार लौ नया सामान पनि पाउने पुरानो सामान पनि मर्मत हुने यो त ढुङ्गा खोज्दा बेलुका मिले जस्तै भयो नि दिदी
5: हजुर बिजुली को भरपर्दो सहयात्री शांति स्टोर एण्ड सप्लायर्स सोलु गुटकुंड नगर पालिक वडा नंबर 5 सल्लेरी सोलु खुम्बु यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसल तथा खुद्रा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत कर जानकारी का संपर्क नंबर गुरू कुल नारायण श्रेष्ठ 97 63 00 57 84 विवेक श्रेष्ठ 98 62 82 00 00 सुनो धुपकुंड नगरपालिका 5 सल्लेरी सुनो खुम्बु
6: आँखा सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई सम्पूर्ण सेवा सुनो खुम्बु आँखा उपचार केन्द्रबाट सम्भव
7: सोलू दुधकुण्ड नगरपालिका उडानबर पाँच समितिको मध्य भागमा रहेको सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्र सोलुखुम्बुमा आँखा सम्बन्धी समस्या भएकाहरूलाई सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा जन्मिएर आँखा उपचार सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेको साथै जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र फाप्रीमा एक दशक भन्दा बढी लामो समय काम गरेको अनुभव लिएका विनोद साईद्वारा सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छ।
8: हाम्रा सेवाहरू
7: दक्ष र अनुभवी दृष्टि विशेषज्ञ साथै ओए मार्फत सुरक्षित तरिकाले आँखाको उपचार गरिन्छ। दृष्टि एवं चस्मा जाँच आँखाको नानीबाट फोहोर निकालिन्छ। आँखाको आँडा निकाल्नको साथै कम्प्युटरबाट आँखाको जाँच गरिन्छ। आँखाको जाँच पड़ताल कम्प्युटर प्रविधिबाट चस्मा फिटिङ गरिन्छ। चस्मा एवं सनग्लास खरिदमा 10% छुट दिइन्छ। विद्यार्थीहरूलाई ओपीडीमा 30% र चस्मा खरिदमा 20% छुट गरिएको छ। वृद्ध अपाङ्ग तथा असहाय साथै विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी चार्जमा 30% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। पुनश शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध हुनेछ।
8: तपाईँको दिनेश राई सम्पर्क नम्बर 9858873005 र 9816034213।
7: सोलुखुम्बु आँखा उपचार केन्द्र सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका उडानबल 5 सहेरी।

0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिनेर दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत गराउँ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गराउँ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना।
0: गत 2026 अगस्त 26 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहरो सही राष्ट्रीय विपत्ति को बुझीलाई गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारित हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति जुटाने अतिथ सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दी। नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हमीर सब सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान कर हार्दिक आग्रह करेड पांडा नेटवर्क संघ को सहकार में इस आयोजक समिति ने आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना करने वाने रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन करी 2026 नोवेम्बर 28 में आयोजना करने निर्णय विहरा संबंधित सभी में जानकारी
2: कराई। वातावरण सेवा रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी

0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरौं, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना।
0: गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जंगल को स्थिति प्रति हमी गहरो सकारात्मक छी राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारी इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दुख्भ अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दी नया मिति में इस मैराथन भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न करना हामीलाई थप सहयोग सल्लाह तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनुहोला भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछु। रेड पांडा निजोग संघको सहकार्यमा इस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 में आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विवरण सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराइन्छ।
2: अध्यक्ष निमाटे गुरुशेर्पा हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुधार के लिए।

0: Ponta, miejscowość Lucia Jasnego, Andro Płaszczu Rodzaj.
1: बाटा बच्चों का बताएं यंत्र हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यंत्र हिंसा को दुखी मासूम उपचार हिंसा समिति असंतोष साकर है परिषद मोटे बाटा जैसे की बाटा से निश्चित अभिभावक ने अपना सुरक्षित को व्यवहार से रखो बाल बालिका को चाल चलन पानी देना और अभिभावक परिवर्तन आय को निश्चित इसके पहले उन्हें विषय तत्काल पूरा कराओ बाल बालिका से नियमित संपर्क होने कराओ
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Solu FM Studio Time
4: 7 PM Saatko 7 baje
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंभू